0: душат. Фоменко фейк радио.
1: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened, Johnny?
2: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
1: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. 1